0: नमस्कार दोस्तों, आज रविवार की इस दोपहर में आप फिर से जुड़ रहे हैं आरजे नीला श्री के साथ रेडियो एडलाइट पे, और हमारे साथ शंपा दी हैं टेक्निकल सपोर्ट में। उन्हीं की सपोर्ट से हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहे हैं रेडियो प्रिय भारती पे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जो हमसे बातचीत करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम उनसे लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में, और फिर उनसे ही जानेंगे हम किस बारे में बात करेंगे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो हमारे श्रोता और हम सब मिलके आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद नीला श्री जी, मैं आपकी और रेडियो एडलाइट की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मेरे श्रोताओं के साथ साझी करने का अवसर दिया है। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छे प्रीति जी। तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस विषय में उनसे जानकारी साझी करेंगे।
1: आज जो मैं यहाँ पे आमंत्रित हुई हूँ, मैं यहाँ ब्यूटी के बारे में और कुछ हेयर से रिलेटेड जानकारी मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम आगे करेंगे।
0: शुरू करने से पहले क्या कोई एक सुंदर सा गाना सुन ले, मधुर सा?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप जिंदगी के सफर में गाना बजा सकते हैं, क्योंकि आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि किशोर कुमार जी ने गाया है।
0: चलिए हम सब मिलके सुनते हैं जिंदगी के सफर में, बहुत ही अच्छा गीत है। आइए लेते हैं गीत का आनंद, फिर लेंगे बातचीत का आनंद।

0: तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गाना? तो चलिए बातचीत करते हैं, फिर से शुरू करते हैं प्रीति जी से। सबसे पहले हम जानेंगे उनके बारे में। प्रीति जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं भारत देश से आई हूँ। मुझे यहाँ एडलेड आए हुए 9 साल हो गए हैं। मैं पहले 15 साल भारत में एक हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों का लालन पोषण करती थी, कभी कुछ किया नहीं पढ़ाई के बाद। बट जब पता लगा कि हम एडलेड मूव हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं, तो सोचा कि एक हुनर हाथ में ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने ब्यूटी का ये कोर्स वहाँ पर कर लिया। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं, बहुत सारे मौके दिए हैं। यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ और सीखा, अपने स्किल्स को मैंने अलग अलग फील्ड्स के अंदर यूज़ किया, उन्हें बढ़ाया। फिर मैंने यहाँ पर भी दोबारा से ब्यूटी का कोर्स किया, क्योंकि जो मैंने भारत में सीखा वो वहाँ की स्किन के हिसाब से था, और यहाँ की स्किन के हिसाब से क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, मल्टीकल्चरल ये कंट्री है, तो मुझे लगा कि यहाँ सीखना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से कोर्स किया, जिसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंट लगा, और मैंने यहाँ से अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया जो ब्यूटी को लेकर था। धीरे धीरे मैंने उस बिज़नेस को बढ़ाया और मैंने हेयर की जानकारी ली, मैंने हेयर का काम सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने नेल्स का काम सीखा, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो पसंद करते हैं मेरे पास आना, मैं उन्हें अच्छी गाइडेंस देती हूँ। वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उन्हें अच्छे से समझाती हूँ, बताती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो औरों के साथ भी बांटूँ। ये ज़रूरी नहीं कि उनको कोई कोर्स ही करना पड़े, बट जो छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आगे बढ़कर शेयर करती हूँ, और वही आज सब मैं आपके साथ साझी करने आई हूँ।
0: बहुत अच्छे प्रीति जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में, हम क्या क्या यहाँ पर सर्विसेज ले सकते हैं। तो प्रीति जी, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए।
1: अच्छा, तो अगर ब्यूटी के टॉपिक पे बात हो ही रही है, तो क्यों ना हम आराधना मूवी से गाना सुने, जो कि किशोर कुमार जी ने गाया है, रूप तेरा मस्ताना। बजा सकते हैं नीलाश्री जी?
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल बजा सकते हैं।
2: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

0: दोस्तों, गीत का आनंद तो लिया हमने, तो चलिए अब बातचीत करते हैं प्रीति जी से, लेते हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रीति जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत में तो आप हाउसवाइफ थी, पर यहाँ आने से पहले आपने ब्यूटी का कोर्स किया और यहाँ पे भी किया, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी सेवाएं हमारे जो कम्युनिटी में देती हैं, लोग कैसी कैसी सेवाएं लेने के लिए आपके पास आते हैं।
1: हाँ जी नीलाश्री जी, तो मेरी जो हम सेवाएं प्रोवाइड करते हैं उसमें हम फेशियल्स करते हैं, स्किन फेशियल्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर वैक्सिंग है, बॉडी वैक्सिंग जिसे कहते हैं, आईब्रो थ्रेडिंग है, आप नेल्स की कोई भी सर्विस ले सकते हो, नेल्स में एक्रिलिक हैं, एसएनएस हैं, बिल्डर जेल है, नॉर्मल शेलैक पेंट्स है, सो मेकअप्स प्रोवाइड करते हैं, कई तरह का मेकअप है उसमें भी, पार्टी मेकअप है, एचडी मेकअप है, डे मेकअप, नाइट मेकअप, ग्लैम मेकअप लुक, हेयर स्टाइलिंग्स हैं, मैं हेयर कट्स प्रोवाइड करती हूँ, हेयर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। आप मैनीक्योर ले सकते हैं, आप पैकेजेस ले सकते हैं, अगर आप काफ़ी सारी सर्विस एक साथ कराना चाहते हैं तो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। तो यही सब सर्विसेज मैं ब्यूटी, हेयर और नेल से रिलेटेड प्रोवाइड करती हूँ अपनी कम्युनिटी में।
0: तो जैसे पैकेजेस की बात की, तो क्या होता है उन पैकेजेस में?
1: पैकेजेस कैसे हैं कि अगर आपको वैक्सिंग करानी है और आप फुल लेग्स, आर्म्स और अंडर आर्म्स, मतलब आप दो तीन चीज़ें एक साथ करा रहे हैं, तो उसका एक पैकेज बना देते हैं कि रादर देन आपको अलग अलग पे करने की बजाय, जो कि आपको ज़्यादा पड़ता है अगर आप ज़्यादा चीज़ें करा रहे हैं, तो ज़्यादा आप अगर ज़्यादा काम करा रहे हैं तो उसमें जैसे आपको बेनिफिट हो जाता है, वो पैसे कम हो जाते हैं, तो वो एक पैकेज बन जाता है। अगर फेस्टिवल टाइम आता है, क्योंकि हम इंडियंस हम बहुत शौकीन हैं, इंडियन लेडीज़ खास करके, हमें तैयार रहना बहुत अच्छा लगता है, हम सजना हमें बहुत पसंद है, जैसे कि हमारे कल्चर में है ही, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई इतना टाइम निकाल के आ रहा है, कोई अपनी खूबसूरती को निखारना चाह रहा है, तो फिर जो वो सर्विसेज ले रहे हैं उसमें हम उनको दो तीन चीज़ों की सर्विसेज, जैसे फेशियल है, थ्रेडिंग्स है, या वो अगर मेकअप ले रहे हैं तो उनको उसके साथ कुछ फ्री दे दिया। तो फ्री को जो आप कहोगे कि आपको एक सर्विस उतनी फ्री मिल गई, तो वो एक पैकेज बन जाता है। तो पैकेज में आपको जितनी चीज़ें आप कराना चाह रहे हो, अगर आप अलग अलग पैसे दोगे तो वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो पैकेज में वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, जो आपका प्राइसिंग है वो आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी किफ़ायती रहता है और मेरे लिए भी अच्छा रहता है कि चलो एक ही बारी आके सब अपना काम करा के गए और खुश होके गए। इसमें बिल्कुल क्लाइंट को फ़ायदा है, उनको उसमें सेविंग हो जाती है थोड़ी सी, और वो मोस्टली पैकेज ही फिर प्रेफर करते हैं।
0: तो ये जो सेवाएं हैं, लोग रूटीन में लेते हैं या फिर कोई आपको लगता है, जैसे आपने बात की कि हमारे जो कल्चर में सजना अच्छा लगता है, तो कोई स्पेशल त्यौहार होते हैं, कोई मौके होते हैं जब वो आपके पास मेकअप के लिए आती हैं?
1: देखिए नीलाश्री जी, मुझे लगता है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं हमारे कल्चर के साथ, हमारे पास इतने सारे त्यौहार हैं मनाने के लिए, मुझे लगता है हर महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और क्योंकि हम अपने देश से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, तो यहाँ जो हमारे दोस्त हैं, जिस भी कम्युनिटी के साथ हम हैं, वही हमारा परिवार है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर हर किसी के घर में कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, किसी ने घर खरीदा है उसकी पूजा है, किसी के यहाँ कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर है, या लेडीज़ एक साथ मिल रही हैं, या कपल्स मिल रहे हैं, सो इतने सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं एज इंडियन भारतीय, कि बहुत मौके आते हैं हमें तैयार होने के लिए। और हाँ, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर सेवाएं लेते हैं, जैसे कि वैक्सिंग, ये तो बहुत कॉमन है, फेशियल्स, आपकी फेशियल स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए, आईब्रो थ्रेडिंग, वो तो हम कराते ही कराते हैं, एक आईब्रो थ्रेडिंग करा के ही मेरे 90% क्लाइंट्स बोलते हैं, और हर बार बोलते हैं ओह मेरा चेहरा कितना बदल गया है जबकि सिर्फ वो थोड़ा सा फीचर एनहेंस करते हैं हम आईब्रो का, और उन्हें उससे इतनी खुशी मिलती है। तो आप सोचो, जब आप भी अगर मेकअप करते होगे तो आप और कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया, आपने अपने आप का ख्याल रखा। तो बस वही सर्विसेज हैं और जो लोगों को खुशी देती हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही प्रीति जी आपने, कि हमारा

0: आपका बहुत बिजी रहता होगा।
1: बिजी तो रहता है पर यहाँ पर एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेरी फुल टाइम जॉब है, उसके साथ साथ मैं अपना ये बिजनेस भी मैनेज करती हूँ। क्योंकि देखो आप जानते हो यहाँ सब काम करते हैं, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो डे टाइम पे मोस्टली लोग अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी तरह की सर्विस के लिए, तो लोग आना चाहते हैं वीकेंड्स पे जब उनके पास टाइम है या फिर काम के बाद। तो वही सोच के मैंने भी फुल टाइम जॉब ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली, जो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बट मुझे अपना काम बहुत मिस होता है। तो काम से आने के बाद आप मानोगे मैं रोज़ शाम को अपने क्लाइंट्स लेती हूँ, मैं वीकेंड पे अपने क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ, मुझे खुशी, मैं बहुत खुशी मिलती है। दरअसल मुझे काफ़ी बार लोग पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि तू थकती नहीं है इतना काम करके, क्या ज़रूरत है, बट मुझे लगता है नहीं, जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, तो उनको जो खुशी मिलती है वो बहुत खुशी देती है मुझे।
0: बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं प्रीति जी आप, तो बहुत ही अच्छा है आप अपनी जॉब के साथ इसको कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, एक गाना सुनते हैं गीत का आनंद लेके, फिर से हम बातचीत करेंगे और जानकारी आपसे साझी करेंगे। तो कौन सा गाना आप फिर से आप सुनना चाहेंगी?
1: आप गाना बजा सकते हैं पल पल दिल के पास, जो मेरे प्यारे श्रोता हैं वो मेरे दिल के पास रहते हैं, तो हम ये गाना सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल, श्रोता जो हैं वो हमारे दिल के पास हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए और अपनी खुशी के लिए हम सुनते हैं प्यारा सा गीत पल पल दिल के पास।

0: तो दोस्तों गीत का आनंद तो लिया हमने, पर बातचीत भी जारी रखेंगे क्योंकि हमें बहुत सी जानकारी लेनी है प्रीति जी से। तो आइए फिर से जुड़ते हैं रेडियो एडलाइट के साथ और सुनते हैं प्रीति जी से कुछ और बातें। तो प्रीति जी, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये सेवाएं आप देते हैं, तो आपने उसमें बालों की बात की कि हेयर सर्विसेज भी आप देते हैं, तो आप कौन कौन सी हेयर सर्विसेज देते हैं, मतलब क्लाइंट्स आते हैं कौन कौन सी सेवाएं वो लेना चाहते हैं?
1: तो हेयर सर्विसेज में हेयर कट्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद कई तरह का हेयर ट्रीटमेंट है आज मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। हेयर कलरिंग है और रूट टचअप है, रूट टचअप जो ग्रे हेयर कवरेज करता है, जो कि यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या बन गई है हम लेडीज के लिए। तो रूट टचअप तो लोग रेगुलरली बेसिस पे कराते हैं, मतलब 4 हफ्ते पे आपका रूट अच्छा ग्रो हो जाता है, तो उसके लिए रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स में कैराटिन ट्रीटमेंट है, नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट है एंड बोटॉक्स भी आता है। तो नैनोप्लास्टी जो है वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, एक्चुअली जो नैनोप्लास्टी है वो ऑयल बेस, और आप उसे प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह आप उसे मान सकते हो, वो बहुत हार्श केमिकल्स उसमें बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि एक्चुअली हेयर ड्रेसर क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह का प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप मेकअप की भी बात करो, तो मेकअप में भी दुनिया जहान के फाउंडेशंस हैं, दुनिया जहान के लिपस्टिक्स हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसे ही हेयर के अंदर भी है। कैरेटीन जो है वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है, क्योंकि वो आपके बालों को ज़्यादा स्ट्रेट करता है। जैसे जैसे कैरेटीन वॉश होते रहता है आपके बालों से, आप बाल धोते हो, तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है, जो क्लाइंट बताता है। नैनोप्लास्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनोप्लास्टी ऑयल बेस है, वो आपके बालों के अंदर तक जाके बालों को रिपेयर करता है, उसको नरिशमेंट देता है, और जिससे आपके बाल नेचुरली सॉफ्ट रहते हैं, लो मेंटेनेंस हो जाते हैं, आपको एनवायरमेंटल डैमेज से बचाते हैं, और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरे जो 6 से 8 महीने में दोबारा आते हैं और काम ले रहे हैं दोबारा से, मतलब वो सर्विस ले रहे हैं। तो देखो, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आपका क्लाइंट ही बताता है कि आप क्या चीज़ अच्छी कर रहे हो। अगर वो आपके पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको आपका काम अच्छा लग रहा है। तो हेयर का काम ऐसा है कि लोग आते हैं दोबारा, जब काम कराते हैं तो मुझे भी पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, और वो फिर मैं आगे रेकमेंड भी करती हूँ पर्सनली।
0: तो जैसे लोगों को इस बात को लेके मिथ है क्या कि बालों का कोई भी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्या कुछ ऐसा है कि ट्रीटमेंट के बाद कोई हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो जाता है?
1: देखिए, अब जहाँ तक बात है हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल होने का कोई एक कारण नहीं होता है। हाँ, मैं मानती हूँ लोग कहते हैं कि कलर, हमने बालों में कलर कराया था तो हमारा हेयर फॉल होने लग गया, या हमने कलर कराया था तो हमारे बाल सफ़ेद होने लग गए, ये मिथ है। देखिए, कलर, नो डाउट कलर एक केमिकल है जो हमारे, हम रूट पे लगाते हैं या बाल पे लगाते हैं, तो वो उसका कलर चेंज करता है, उसको पिगमेंट देता है, जो भी पिगमेंट आप चाहते हो। बट आप अगर ये सोचो कि उसकी वजह से आपका हेयर फॉल है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल आपके बॉडी पे भी बहुत इफ़ेक्ट, मतलब बॉडी के इफेक्शन से भी होता है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले वो हेयर पे ही आता है, आपके हेयर फॉल होना शुरू होंगे। आप अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, अंदर से आपकी बॉडी वीक है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको मल्टीविटामिंस चाहिए हैं, जो आज के टाइम पे हमें लेना बहुत ज़रूरी है, हमें ओमेगा 3 चाहिए है ना, काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आज हम इतने बिजी हैं अपनी डेली, जो हमारी दिनचर्या है, जॉब्स पे जाना है, घर आके काम करना है ना, तो हम अपने आप का केयर नहीं कर पाते हैं।
0: सही बात।
1: और फिर हमें लगता है कि उस टाइम पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो ये इसकी वजह से है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल है, आप अपने ब्लड टेस्ट कराओ, आप अपने डॉक्टर से बात करो, आप अपने लेवल्स चेक करो कि आपको कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। हेयर फॉल का एक कारण आपकी लो आयरन होता है।
0: तो जैसे प्रीति जी आप बता रहे थे कि मतलब ये एक तरह से एक मिथ है कि जो हेयर फॉल है, मतलब उनको लगता है कि केमिकल अप्लाई हो रहे हैं हमारे बालों पे तो उससे हेयर फॉल हो रहा है, या मतलब कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो डैमेज नहीं करते हेयर को और हेयर फॉल और वजह से ही हो रहा है?
1: देखिए, हम इसे 100% मिथ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स तो हैं, केमिकल्स हैं तभी वो आपके बालों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बट आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेके प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हो, वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके ऊपर लगा रहा है। अगर तो प्रोडक्ट ऑयल बेस है, लो हार्श केमिकल है जो कंपनीज बताती हैं, तो अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता है। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि क्लाइंट को अगर काम अच्छा लग रहा है, क्लाइंट आपके पास दोबारा काम कराने आ रहा है, तो वो एक तरह से आपको ये नॉलेज भी दे रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे बालों पर अच्छा काम किया, या जो उन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराए थे उससे ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह से हम हेयर ड्रेसर्स को पता लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से हम सप्लाई देते हैं। ये तो हमने स्कूलों में सबने पढ़ा हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक। तो जिस तरह से लोगों को पसंद आता है उस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं।
0: बिल्कुल प्रीति जी, तो सही बात है आपकी, अगर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए जाएँ तो उस वजह से हेयर डैमेज नहीं होता।
1: हाँ जी।
0: तो जैसा कि आपने पहले बताया था अपनी बातचीत में कि केराटिन से फिर भी थोड़ा सा लगता है, पर नैनोप्लास्टी आप बता रहे थे कि वो ऑयल बेस्ड है, वो अच्छा है थोड़ा सा।
1: देखिए, नैनोप्लास्टी भी कई तरह की कंपनीज ने लॉन्च करी है मार्केट में। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो मोस्टली ऑयल बेस्ड है, वो बालों को काफ़ी इंटरनली जाके उसको रिपेयर करता है, बॉन्ड आपका बाल का स्ट्रॉन्ग करता है। केराटिन का देखिए, मैं ऐसे किसी कंपनी के ऊपर मैं हाथ उंगली नहीं उठा सकती हूँ, बट हाँ, केराटिन कराने के बाद क्लाइंट्स बहुत खुश नहीं हैं।
0: ओके।
1: जो मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो रिव्यू देते हैं, मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ कि अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमेशा ज़रूरी है जानना कि उनको वो सर्विस कैसी लगी। और वो आप अगले दिन ही नहीं पूछ सकते हो, आपको महीने, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, जब भी आपको लगे कि हाँ, अब ये इनफ टाइम है रिस्पॉन्स देखने के लिए कि प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किया उसका रिस्पॉन्स कैसा था, तो आप उस वक्त पूछ सकते हो। और नैनोप्लास्टी सच में बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, लोग पसंद कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, और वो खुश भी हैं वो काम करा के। तो जहाँ तक आई बात केमिकल्स की, अगर हम हेयर कलर करते हैं तो हाँ, वो हमारे बालों पे इफ़ेक्ट करता है। हेयर में एक बहुत मेन प्रोडक्ट है कलरिंग में, उसे लोग ब्लीच कहते हैं, प्री लाइटनिंग कहते हैं हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में। वो भी एक लिमिट तक आप अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं, वो कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है। लोगों को लगता है बालों में ब्लीच लग गई, मेरे बाल ख़त्म हो गए। हाँ, वो आपके बालों पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो आपके बालों से पिगमेंट निकालती है। मुझे लगता है कि हेयर ड्रेसर की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लाइंट को पूरा नॉलेज दें। कई बार क्लाइंट जो है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड जाना चाहते हैं, अगर उनका ब्लैक हेयर है या डार्क ब्राउन हेयर है, तो वो बहुत ज़्यादा उसे ब्लॉन्ड पे कलर पे लेके जाना चाहते हैं, और जिससे उनका बाल डैमेज होता है, 100% डैमेज होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पिगमेंट आ रहा है ना बाहर,
1: पिगमेंट, हाँ, वो आप पूरा पिगमेंट आपका सोक करके निकाल रहा है। तो कुछ हर लेवल्स होते हैं, जब हम ब्लीचिंग भी करते हैं बालों में तो उसके लेवल्स होते हैं। तो ये हेयर ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइंट को बताना कि अगर आप इस लेवल तक अपना कलर लेके जाना चाहते हैं तो आपका बाल इतना डैमेज होगा। बट देयर आर सेफ लेवल्स, जहाँ पे आप ब्लीच बालों में करके उतने ही लिमिट तक आप अपने बाल का कलर निकालिए जितने में आपको डिजायर कलर आ जाए। और हम इंडियन स्किन पे या आप हेयर्स पे कह लीजिए, आप बिना ब्लीच के भी कलर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लीच के साथ जाना है, आप ब्राउन फैमिली के कलर्स में जा सकते हैं, कॉपर फैमिली में जा सकते हैं, रेड फैमिली में जा सकते हैं, अनलेस आप ब्लॉन्ड फैमिली में जाएं, ब्लीच इज सेफ।
0: तो फिर मतलब आपकी बातचीत से ये लगा कि टेक्निक प्रॉपर यूज हो तो ठीक रहता है। प्रीति जी, बहुत अच्छी बात आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप सांझी कर रहे हैं जानकारी, तो हमारे श्रोता बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। तो हम मिलके फिर से, आप एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे, गाना सुनना चाहेंगे, पर आप ही की पसंद का कौन सा आप बताओ।
1: अब अगर हेयर के टॉपिक पे बात हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम गाना सुने। मूवी का नाम है तीसरी मंजिल और गाने के बोल हैं ओ हसीना जुल्फों वाली।
0: बहुत अच्छा प्रीति जी, आप तो बिल्कुल टॉपिक पे स्टिक गाना ढूंढ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। चलिए दोस्तों, लेते हैं गीत का।

0: का आनंद लेने के बाद फिर से जुड़ते हैं रेडियो प्रिया भारती पे और प्रीति जी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रही हैं और आप बात कर रहे हैं आरजे नीला शीश से। तो दोस्तों आप भी हमें बताएं कि कैसे लग रही है हमारी बातचीत, क्या आपको कोई महत्वपूर्ण कोई अच्छी लग रही है ये जानकारी, अपनी फीडबैक भी दें। तो आइए लेते हैं और जानकारी प्रीति जी से। तो हम जानना चाहेंगे प्रीति जी आपसे कि आपके जो सर्विसेज आप दे रही हैं सबसे आपकी पसंदीदा सर्विस कौन सी है और आप क्यों इसको एंजॉय करती हैं?
1: तो एक्चुअली मेरी सारी सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं उन्हें प्रोवाइड करती हूँ। उसमें से कुछ भी मुझे ऐसा नहीं है कि जो नहीं पसंद है, पर हाँ एक सर्विस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है मेकअप। तो मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कहो, मैं 6 घंटे लगातार 6-7 लोगों को तैयार कर सकती हूँ बिना थके हुए, बिल्कुल मुझे टायर्ड फील नहीं होता। और मैंने ऐसा किया भी है, कई शादियों में मैंने ब्राइडमेड्स तैयार करी हैं एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, जैसे 5 लोगों को तैयार करना है, 6 लोगों को तैयार करना है,
0: लगातार
1: खड़े होके, और मुझे टचवुड मुझे कभी टायर्ड फील नहीं हुआ। और मुझे लगता है क्यों टायर्ड फील नहीं हुआ, क्योंकि जब लोग आते हैं मैं उनकी बिफोर आफ्टर फोटो उनसे पूछ के लेती हूँ, ताकि वो अगर देखना चाहें कि वो पहले कैसे लग रहे थे और क्या डिफरेंस है मेकअप के बाद। तो सबसे पहले लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मेकअप चाहिए है पर हमें मेकअप नहीं चाहिए है। तो आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि उनको एक सटल लुक चाहिए, जो आजकल के टाइम में हर किसी को पसंद है। किसी को भी मुंह पे थुपा हुआ केकी मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ग्लिटर्स जो बाद में फेस पे गिर रहे हैं, ऐसा लुक किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो आज के दौर में लोगों को सटल लुक बहुत पसंद है। और जब मुझे कोई क्लाइंट ये पूछता है कि हमें ना मेकअप तो चाहिए है, अच्छा मेकअप चाहिए लेकिन सटल चाहिए,
0: नेचुरल लगे
1: तो फिर वो तो कम प्राइस पे होना चाहिए। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपकी जानकारी के लिए जो सटल मेकअप करना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल मेकअप है, क्योंकि प्रोडक्ट लेके उसको टेक्निक वाइज फेस पे लगाना और उससे नेचुरल दिखाना, इट्स अ टास्क,
0: बिल्कुल बड़ा टास्क।
1: और ये आपके हाथ का हुनर है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट ये काम करते हैं उन्हें पता है कि सटल लुक देना इज द टफेस्ट लुक, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी लगाना है, लेकिन आपको प्रोडक्ट
0: लगना भी नहीं चाहिए कि मेकअप किया हुआ है,
1: प्रोडक्ट ऐसे लगाना है कि वो उनको थुपा हुआ नहीं लगे अपने फेस के ऊपर और बहुत नेचुरली उनके फीचर्स को एनहांस करें। और जब भी मेकअप करने के बाद मुझे क्लाइंट वहीं चेयर पे बैठे बैठे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अरे वाह हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम वैसे नहीं लग रहे जैसे हमने सोचा था। कई बार क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि हम निकल रहे थे तो हमारे हस्बैंड ने बोला और हमारे बेटे ने बोला कि अभी तो मम्मी जा रही है, वापस पता नहीं कौन सी मम्मी आएगी।
0: तो
1: क्योंकि क्योंकि पहले के टाइम पे पहले के टाइम पे ऐसे मेकअप होते थे कि आपका चेहरा बदल जाता था, आप बिल्कुल अलग लगते थे। लेकिन आज के टाइम में जो मेकअप की टेक्निक्स हैं वो काफी बदल गई हैं। नो डाउट हमारी जो स्किन है, कई बार एशियन स्किन मैं कहूंगी, वो थोड़ी पिगमेंटेड है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, तो उसको टैकल करना कई बार मुश्किल हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, जिसके लिए हमें प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं
0: उन पिगमेंट्स
1: को हाइड करने के लिए। और जब आप काम करते हो, कोई भी काम करता है और उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि क्लाइंट को लगता है कि जो उनकी डिज़ायर थी, जो वो सोच कर आए थे कि उन्हें वैसा लुक चाहिए और उन्हें वैसा लुक मिला, तो वो आपको खुशी देता है, वो क्लाइंट को भी खुशी देता है, तो आपको डबल बेनिफिट है।
0: तो इसीलिए आपका ये पसंदीदा पार्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक और कारण है इसका कि जब मुझे नेक्स्ट डे क्लाइंट फोन करके ये बताता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, या पार्टी में जितने लोग थे उन्होंने मुझे देखकर उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, तो जितना खुशी उनको होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे होती है कि मैंने
0: काम आपका था,
1: कि मैंने वो काम करके दिया कि किसी को खुशी मिली।
0: बिल्कुल। तो बहुत अच्छा प्रीति, जैसे लोगों जैसा चाहते हैं वैसी सर्विस उनको मिल जाती है, मन को खुशी देती है। तो इस खुशी में वृद्धि करने के लिए कोई आप अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कैसा कोई आपको यादगार अनुभव रहा हो, वो हमसे साझा करें प्लीज।
1: यादगार अनुभव तो सारे ही होते हैं, क्योंकि मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से इंट्रैक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रील्स बनाना बहुत पसंद है। तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बहुत चुलबुले हैं, मेरी तरह मैं उनसे परमिशन लेती हूँ पहले, अगर वो रील बनाना चाहें तो मैं उनके साथ रील बनाती हूँ बिफोर आफ्टर मेकअप की, और उनको थोड़ी बहुत एक्टिंग के स्टेप्स बता देती हूँ गाने के साथ, जिसे वो करके बहुत खुश होते हैं।
0: अच्छा, साथ में ये सर्विस भी देते हैं क्या बात है।
1: नहीं, हम बहुत खुशी खुशी काम करते हैं एक्चुअली। टचवुड, जो भी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैंने उन्हें हमेशा हंसते ही देखा है, कोई दुखी होकर नहीं गया। और अगर कभी कोई दुखी हो भी गया हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, कई बारी उतनी खुशी नहीं दे पाती। बट हाँ, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं उनकी परमिशन से, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे डालते हैं, और जब लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा खुशी देता है।
0: तो वो खुशी देने वाली फ़नी वीडियोज़ बनाते हो ताकि देख के खुश हों लोग?
1: हाँ बिल्कुल। आप अगर देखना चाहेंगे सोशल मीडिया पर आजकल जितना मेकअप का ट्रेंड है या और किसी सर्विस का ट्रेंड है, फनी वीडियोस कितनी आती हैं, वो लोगों को खुशी देती हैं, लोगों का मन बहला के रखती हैं स्ट्रेसफुल माहौल में। आपने देखा ही होगा आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो बस उसी तरह से हम भी वीडियोस बनाते हैं क्लाइंट्स के साथ और उन्हें खुशी देते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है प्रीति जी आप, क्योंकि आज का तो इतना तनाव भरा जीवन है सबका, तो कोई भी चीज, छोटी सी भी चीज खुशी दे जाए तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं आप। तो पुण्य भी फलियां भी आपका भी काम हो रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा। तो चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर से जुड़ेंगे रेडियो प्रिया भारती में और कुछ और बातें आपसे साझी करेंगे। पर आपकी पसंद का फिर से एक गाना सुनना चाहेंगे।
1: अब आप मेरी पसंद का एक और गाना सुनना चाहते हैं, तो एक फिल्म है दिल्ली का ठग, किशोर कुमार जी और आशा भोंसले ने वो गाना गाया है, और क्योंकि लोग मेकअप करके रात को पार्टियों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो गाने का नाम है ये रातें ये मौसम, तो क्यों ना ये बजाया जाए।
0: क्या बात है, बिल्कुल स्टीक चुना गाना आपने, बहुत अच्छे। चलो दोस्तों लेते हैं गीत का आनंद, ये रातें ये मौसम।

0: तो दोस्तों आइए फिर से हम रेडियो प्रिय भारती पे प्रीति जी से थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। प्रीति जी, हम जानना चाहेंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है और आप उसको कैसे टैकल करते हैं?
1: देखिए, आज के टाइम पर आपके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, और साथ ही साथ जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में नए नए लॉन्च होते रहते हैं, तो आपको अपने आप को उनके साथ अप टू डेट रखना पड़ता है। आपको वो टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं, आपको वो ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, ताकि आप उस मार्केट के साथ अपने साथ मतलब बराबरी में आप चल सकें और आप अपने क्लाइंट्स को जो भी लेटेस्ट सर्विसेज आ रही हैं वो प्रोवाइड कर सकें। तो उसको चेज करना, उसके साथ बने रहना अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फुल टाइम जॉब है, हाँ, तो वो सब ट्रेनिंग्स लेते रहना, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखना, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्लाइंट है, अगर कोई सोचे कि उनको कुछ नहीं पता है, वो बेवकूफ है। नहीं, क्लाइंट आपसे ज्यादा समझदार है। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैला दी है मार्केट में कि आज हर किसी को हर तरह की नॉलेज है। तो आपको भी अपने आप को उस हिसाब से अपडेट रखना पड़ता है, जो मुझे भी रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम निकाल सकूँ और जो भी मेरे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उनको फुलफिल कर सकूँ।
0: प्रीति जी, तो और कौन से तरीकों से आप अपनी स्किल्स को अपडेट रखती हैं?
1: देखिए, आज के टाइम पे सोशल मीडिया जो है वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको बताता है कि मार्केट में क्या नया आ रहा है। मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको अपडेट रखते रहते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है, आप इसे यूज़ करके देखिए, जो मैं भी अपने बिजनेस में यूज़ करती हूँ, क्लाइंट्स के साथ उनके साथ साझा करती हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। कई बारी मैं जाती हूँ अगर कुछ सामान खरीदने और कुछ नया लेके आती हूँ जो बहुत अच्छे प्राइस में है, चाहे वो फाउंडेशन है या कोई नई तरह की लिपस्टिक आई है जो लॉन्ग स्टे है, तो मैं फट अपने मेरे जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें वर्बली बताती हूँ कि अरे ये मार्केट में आया है, ये बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, अगर आपको सेल्फ मेकअप घर पे करना है या पार्टी मेकअप करना है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी टच में रहती हूँ और नई नई चीज़ें खुद भी ट्राई करती हूँ और सोशल मीडिया भी प्रॉपर फॉलो करती हूँ नॉलेज के लिए, ताकि जब क्लाइंट आके मुझे पूछे कि हमें ये करना है और मैं ये ना कहूँ कि अच्छा ये कौन सी सर्विस आ गई है मार्केट में,
0: तो बस अप टू डेट तो रखना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कंपनीज भी आपको कॉन्टैक्ट करती होंगी जब कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी सारे कंपनीज के साथ मेरा टाई अप है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, और काफ़ी सारे ऐसे वेयर हाउसेज भी होते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसका बेनिफिट मैं मेरे क्लाइंट्स को भी देती हूँ। जो चीज़ मुझे सस्ती पड़ती है अगर मेरे क्लाइंट्स मांगते हैं तो मैं वो उन्हें ला के देती हूँ, ताकि मेरा उनका वो बॉन्ड बना रहे और उनकी अगर कहीं चार पैसे बच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उनके साथ, मेरा
0: बिल्ड होती है क्लाइंट के साथ।
1: और अगर मेरे को, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े पैसे कहीं बचा पाऊँ, तो फिर क्लाइंट क्यों नहीं, क्लाइंट क्यों अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे बाहर भर के दे। तो मैं उन्हें इतना अपनी तरफ से मैं जितना सपोर्ट कर पाती हूँ मैं करती हूँ, और वो इस चीज से खुश है।
0: तो ब्यूटी की बात करते करते प्रीति जी, हमारे श्रोता मेरे साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेचुरल ब्यूटी के बारे में आपकी क्या राय है?
1: नेचुरल ब्यूटी, मैं कहूँगी कि देखिए, हर कोई नेचुरल ब्यूटी लेके ही पैदा हुआ है ना, हर किसी के अंदर एक अलग खूबसूरती है, बस देखने का आपको नज़रिया चाहिए है। मेकअप और ब्यूटी या हेयर या नेल्स, ये जो सर्विसेज मार्केट में चल रही हैं, इससे हम सिर्फ उनकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, उसे उभारते हैं, वो भी ज़रूरी है। आप सिर्फ नेचुरल ब्यूटी पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सो के उठ के मुंह धो के किसी पार्टी में चले जाओ तो थोड़ा आपको भी अजीब लगेगा। तो सटल मेकअप, नेचुरल मेकओवर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बाल आपके सर का क्राउन है, आपको क्राउन लिटरली वेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको गॉड गिफ्टेड है। तो अगर वो आपने अच्छे से मेंटेन किया है, आपने अच्छा हेयर स्टाइलिंग किया है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको अच्छा लगता है, और मेरे जैसे लोग जो मार्केट में बैठ के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगता है जब उनके काम की तारीफ होती है या क्लाइंट दोबारा उनके पास आता है। नो डाउट, नेचुरल ब्यूटी है और बहुत है, बहुत है, हर किसी में भर भर के है।
0: और ये मेकअप वगैरह उनको एनहांस कर देते हैं, अच्छे अच्छे जब सुंदर लगते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है।
1: वो सिर्फ उनको उभार, आपके जो फीचर्स हैं उसको डिफाइन करता है, उसे उभारता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रीति जी, बातचीत तो करने का बहुत मन है, पर अभी एक गाना सुनते हैं फिर से।
1: जरूर जरूर। तो जब अगर हम ब्यूटी को लेकर, और आपने मुझसे नेचुरल ब्यूटी को लेकर क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, तो एक फिल्म है कुदरत, किशोर कुमार जी का ये गाना है, कि हमें तुमसे प्यार कितना, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। ये मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपसे लोग भी प्यार करते हैं। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना।
0: बहुत अच्छा संदेश दिया है प्रीति जी आपने हमारे श्रोताओं को, बिल्कुल अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो आइए दोस्तों लेते हैं गीत का आनंद, हमें तुमसे प्यार कितना।

0: तो दोस्तों संगीत की दुनिया से बाहर आए क्योंकि प्रोग्राम हमारा अंतिम चरण में है, हम विदा लेंगे अब। पर जाने से पहले हम प्रीति जी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि अगर वो आप उनको कांटेक्ट करना चाहें, सेवाएं लेना चाहें, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: देखिए, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल वेबसाइट पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं एब्सोल्यूट मेकओवर्स बाय प्रीति, और आपसे मतलब मैं कांटेक्ट करूंगी।
0: बहुत अच्छे प्रीति जी, तो वो ढूंढ सकते हैं आपको गूगल पे।
1: हाँ जी,
0: तो प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको रेडियो एडलाइड की तरफ से, रेडियो प्रिया भारती की तरफ से, शंपा जी की तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। तो आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं अपने बालों को, अपनी सर्विसेज ब्यूटी को, तो कैसे हम सर्विसेज ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आप कोई संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
1: मैं आप सबका और अपने श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुना और मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अवसर दिया कि मैं उनसे बात कर सकूँ। मैं एक सेल्फ केयर का महत्वपूर्ण जो संदेश है वो मैं आप सबको देना चाहूँगी। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पानी पिएं, जितना हो सके नेचुरल फूड खाएँ, अपने वाइटल्स जो हैं वो आप रेगुलर चेक करते रहें, और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, प्लीज़ वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे।
0: धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ मैं नीला श्री आपसे विदा लेना चाहूँगी, फिर से रेडियो प्रिया भारती में किसी अन्य मेहमान के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। शंपा जी हमारे साथ बने हुए हैं अब तक, उन्होंने प्रोग्राम प्रोड्यूस किया ये, तो हम उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे। और दूसरा, हम जाने से पहले एक और मधुर सा गाना सुनेंगे जिसके बोल हैं आज जीने की, फिर से जीने की तमन्ना है, जो कि वहीदा रहमान जी पे फिल्माया गया है, गाइड फिल्म से है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। आज रविवार की इस दोपहर में रेडियो एडलाइड पे आप फिर से 2 घंटे लगातार रेडियो सुन सकते हैं, 1 से 2 रेडियो प्रिय भारती और 2 से 3 द इंडियन वेव, जो प्रोग्राम शंपा जी ने होस्ट किया। आप उन बने रहिए, उनको सुनिए 2 से 3, तो बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए लेते हैं विदा, फिर से मिलते हैं किसी प्रोग्राम में रेडियो प्रिय भारती पे किसी अन्य मेहमान के साथ। तो लोकगीत का आनंद आज फिर जीने की तमन्ना है, जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया है और हिंदी फिल्म गाइड से जिसे लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।

0: नमस्कार दोस्तों, आज रविवार की इस दोपहर में आप फिर से जुड़ रहे हैं आरजे नीला श्री के साथ रेडियो एडलाइड पे, और हमारे साथ शंपा दी हैं टेक्निकल सपोर्ट में। उन्हीं की सपोर्ट से हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहे हैं रेडियो प्रिय भारती पे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जो हमसे बातचीत करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम उनसे लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में, और फिर उनसे ही जानेंगे हम किस बारे में बात करेंगे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो हमारे श्रोता और हम सब मिलके आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद नीला श्री जी, मैं आपकी और रेडियो एडलाइड की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मेरे श्रोताओं के साथ साझी करने का अवसर दिया है। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छे प्रीति जी। तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस विषय में उनसे जानकारी साझी करेंगे।
1: सो आज जो मैं यहाँ पे आमंत्रित हुई हूँ, मैं यहाँ ब्यूटी के बारे में और कुछ हेयर से रिलेटेड जानकारी मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम आगे करेंगे।
0: शुरू करने से पहले क्या कोई एक सुंदर सा गाना सुन ले, मधुर सा?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप जिंदगी के सफर में गाना बजा सकते हैं, क्योंकि आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि किशोर कुमार जी ने गाया है।
0: चलिए हम सब मिलके सुनते हैं जिंदगी के सफर में, बहुत ही अच्छा गीत है। आइए लेते हैं गीत का आनंद, फिर लेंगे बातचीत का आनंद।

0: तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गाना? तो चलिए बातचीत करते हैं, फिर से शुरू करते हैं प्रीति जी से। सबसे पहले हम जानेंगे उनके बारे में। प्रीति जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं भारत देश से आई हूँ। मुझे यहाँ एडलेड आए हुए 9 साल हो गए हैं। मैं पहले 15 साल भारत में एक हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों का लालन पोषण करती थी। कभी कुछ किया नहीं पढ़ाई के बाद, बट जब पता लगा कि हम एडलेड मूव हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं, तो सोचा कि एक हुनर हाथ में ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने ब्यूटी का ये कोर्स वहाँ पर कर लिया। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं, बहुत सारे मौके दिए हैं। यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ और सीखा, अपने स्किल्स को मैंने अलग अलग फील्ड्स के अंदर यूज़ किया, उन्हें बढ़ाया। फिर मैंने यहाँ पर भी दोबारा से ब्यूटी का कोर्स किया, क्योंकि जो मैंने भारत में सीखा वो वहाँ की स्किन के हिसाब से था, और यहाँ की स्किन के हिसाब से क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, मल्टीकल्चरल ये कंट्री है, तो मुझे लगा कि यहाँ सीखना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से कोर्स किया, जिसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंट लगा, और मैंने यहाँ से अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया जो ब्यूटी को लेकर था। धीरे धीरे मैंने उस बिज़नेस को बढ़ाया और मैंने हेयर की जानकारी ली, मैंने हेयर का काम सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने नेल्स का काम सीखा, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो पसंद करते हैं मेरे पास आना, मैं उन्हें अच्छी गाइडेंस देती हूँ। वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उन्हें अच्छे से समझाती हूँ, बताती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो औरों के साथ भी बांटूँ। ये ज़रूरी नहीं कि उनको कोई कोर्स ही करना पड़े, बट जो छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आगे बढ़कर शेयर करती हूँ, और वही आज सब मैं आपके साथ सांझी करने आई हूँ।
0: बहुत अच्छे प्रीति जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में, हम क्या क्या यहाँ पे सर्विसेज ले सकते हैं। तो प्रीति जी, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए।
1: अच्छा, तो अगर ब्यूटी के टॉपिक पे बात हो ही रही है, तो क्यों ना हम आराधना मूवी से गाना सुने, जो कि किशोर कुमार जी ने गाया है, रूप तेरा मस्ताना। बजा सकते हैं नीलाश्री जी?
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल बजा सकते हैं।
2: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

0: दोस्तों गीत का आनंद तो लिया हमने, तो चलिए अब बातचीत करते हैं प्रीति जी से, लेते हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रीति जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत में तो आप हाउसवाइफ थी, पर यहाँ आने से पहले आपने ब्यूटी का कोर्स किया और यहाँ पे भी किया, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी सेवाएं हमारे जो कम्युनिटी में देती हैं, लोग कैसी कैसी सेवाएं लेने के लिए आपके पास आते हैं।
1: हाँ जी नीलाश्री जी, तो मेरी जो हम सेवाएं प्रोवाइड करते हैं उसमें हम फेशियल्स करते हैं, स्किन फेशियल्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर वैक्सिंग है, बॉडी वैक्सिंग जिसे कहते हैं, आईब्रो थ्रेडिंग है, आप नेल्स की कोई भी सर्विस ले सकते हो, नेल्स में एक्रिलिक हैं, एसएनएस हैं, बिल्डर जेल है, नॉर्मल शिलैक पेंट्स हैं, सो मेकअप्स प्रोवाइड करते हैं, कई तरह का मेकअप है उसमें भी, पार्टी मेकअप है, एचडी मेकअप है, डे मेकअप, नाइट मेकअप, ग्लैम मेकअप लुक, हेयर स्टाइलिंग्स हैं, मैं हेयर कट्स प्रोवाइड करती हूँ, हेयर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। आप मैनीक्योर ले सकते हैं, आप पैकेजेस ले सकते हैं, अगर आप काफ़ी सारी सर्विस एक साथ कराना चाहते हैं तो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। तो यही सब सर्विसेज मैं ब्यूटी, हेयर और नेल से रिलेटेड प्रोवाइड करती हूँ अपनी कम्युनिटी में।
0: तो जैसे पैकेजेस की बात की, तो क्या होता है उन पैकेजेस में?
1: पैकेजेस कैसे हैं कि अगर आपको वैक्सिंग करानी है और आप फुल लेग्स, आर्म्स और अंडर आर्म्स, मतलब आप दो तीन चीज़ें एक साथ करा रहे हैं, तो उसका एक पैकेज बना देते हैं कि रादर देन आपको अलग अलग पे करने की बजाय, जो कि आपको ज़्यादा पड़ता है अगर आप ज़्यादा चीज़ें करा रहे हैं, तो ज़्यादा आप अगर ज़्यादा काम करा रहे हैं तो उसमें जैसे आपको बेनिफिट हो जाता है, वो पैसे कम हो जाते हैं, तो वो एक पैकेज बन जाता है। अगर फेस्टिवल टाइम आता है, क्योंकि हम इंडियंस हम बहुत शौकीन हैं, इंडियन लेडीज़ खास करके, हमें तैयार रहना बहुत अच्छा लगता है, हम सजना हमें बहुत पसंद है, जैसे कि हमारे कल्चर में है ही, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई इतना टाइम निकाल के आ रहा है, कोई अपनी खूबसूरती को निखारना चाह रहा है, तो फिर जो वो सर्विसेज ले रहे हैं उसमें हम उनको दो तीन चीज़ों की सर्विसेज, जैसे फेशियल है, थ्रेडिंग्स है, या वो अगर मेकअप ले रहे हैं तो उनको उसके साथ कुछ फ्री दे दिया। तो फ्री को जो आप कहोगे कि आपको एक सर्विस उतनी फ्री मिल गई, तो वो एक पैकेज बन जाता है। तो पैकेज में आपको जितनी चीज़ें आप कराना चाह रहे हो, अगर आप अलग अलग पैसे दोगे तो वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो पैकेज में वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, जो आपका प्राइसिंग है वो आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी किफ़ायती रहता है और मेरे लिए भी अच्छा रहता है कि चलो एक ही बारी आके सब अपना काम करा के गए और खुश होके गए। इसमें बिल्कुल क्लाइंट को फ़ायदा है, उनको उसमें सेविंग हो जाती है थोड़ी सी, और वो मोस्टली पैकेज ही फिर प्रेफर करते हैं।
0: तो ये जो सेवाएं हैं लोग रूटीन में लेते हैं, या फिर कोई आपको लगता है, जैसे आपने बात की कि हमारे जो कल्चर में सजना अच्छा लगता है, तो कोई स्पेशल त्यौहार होते हैं, कोई मौके होते हैं जब वो आपके पास मेकअप के लिए आती हैं?
1: देखिए नीलाश्री जी, मुझे लगता है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं हमारे कल्चर के साथ, हमारे पास इतने सारे त्यौहार हैं मनाने के लिए, मुझे लगता है हर महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और क्योंकि हम अपने देश से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, तो यहाँ जो हमारे दोस्त हैं, जिस भी कम्युनिटी के साथ हम हैं, वही हमारा परिवार है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर हर किसी के घर में कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, किसी ने घर खरीदा है उसकी पूजा है, किसी के यहाँ कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर है, या लेडीज एक साथ मिल रही हैं, या कपल्स मिल रहे हैं, सो इतने सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं एज इंडियन भारतीय, कि बहुत मौके आते हैं हमें तैयार होने के लिए। और हाँ, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर सेवाएं लेते हैं, जैसे कि वैक्सिंग, ये तो बहुत कॉमन है, फेशियल्स, आपकी फेशियल स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए, आईब्रो थ्रेडिंग, वो तो हम कराते ही कराते हैं, एक आईब्रो थ्रेडिंग करा के ही मेरे 90% क्लाइंट्स बोलते हैं, और हर बार बोलते हैं ओह मेरा चेहरा कितना बदल गया है जबकि सिर्फ वो थोड़ा सा फीचर एनहेंस करते हैं हम आईब्रो का, और उन्हें उससे इतनी खुशी मिलती है। तो आप सोचो, जब आप भी अगर मेकअप करते होगे तो आप और कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया, आपने अपने आप का ख्याल रखा। तो बस वही सर्विसेज हैं और जो लोगों को खुशी देती हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही प्रीति जी आपने, कि हमारा जो कल्चर है तो बहुत ही ब्लेस्ड है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, और त्योहारों पे तो सजना सबको ही अच्छा लगता है। तो फिर तो आपका बहुत बिजी रहता होगा।
1: बिजी तो रहता है पर यहाँ पर एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेरी फुल टाइम जॉब है, उसके साथ साथ मैं अपना ये बिजनेस भी मैनेज करती हूँ. क्योंकि देखो आप जानते हो यहाँ सब काम करते हैं, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो डे टाइम पे मोस्टली लोग अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी तरह की सर्विस के लिए. तो लोग आना चाहते हैं वीकेंड्स पे जब उनके पास टाइम है या फिर काम के बाद. तो वही सोच के मैंने भी फुल टाइम जॉब ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली, जो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, बट मुझे अपना काम बहुत मिस होता है. तो काम से आने के बाद आप मानोगे मैं रोज़ शाम को अपने क्लाइंट्स लेती हूँ, मैं वीकेंड पे अपने क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ. मुझे खुशी, मैं बहुत खुशी मिलती है दरअसल. मुझे काफ़ी बार लोग पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि तू थकती नहीं है इतना काम करके, क्या ज़रूरत है. बट मुझे लगता है नहीं, जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, तो उनको जो खुशी मिलती है वो बहुत खुशी देती है मुझे.
0: बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं प्रीति जी आप, तो बहुत ही अच्छा है आप अपनी जॉब के साथ इसको कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं. तो चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, एक गाना सुनते हैं गीत का आनंद लेके, फिर से हम बातचीत करेंगे और जानकारी आपसे साझी करेंगे. तो कौन सा गाना फिर से आप सुनना चाहेंगी?
1: आप गाना बजा सकते हैं पल पल दिल के पास, जो मेरे प्यारे श्रोता हैं वो मेरे दिल के पास रहते हैं, तो हम ये गाना सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा. बिल्कुल, श्रोता जो हैं वो हमारे दिल के पास हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए और अपनी खुशी के लिए हम सुनते हैं प्यारा सा गीत पल पल दिल के पास.

0: कश्मीर का आनंद तो लिया हमने, पर बातचीत भी जारी रखेंगे क्योंकि हमें बहुत सी जानकारी लेनी है प्रीति जी से। तो आइए फिर से जुड़ते हैं रेडियो एडलाइड के साथ और सुनते हैं प्रीति जी से कुछ और बातें। तो प्रीति जी, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये सेवाएं आप देते हैं, तो आपने उसमें बालों की बात की कि हेयर सर्विसेज भी आप देते हैं, तो आप कौन कौन सी हेयर सर्विसेज देते हैं, मतलब क्लाइंट्स आते हैं कौन कौन सी सेवाएं वो लेना चाहते हैं?
1: तो हेयर सर्विसेज में हेयर कट्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद कई तरह का हेयर ट्रीटमेंट है आज मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। हेयर कलरिंग है और रूट टचअप है, रूट टचअप जो ग्रे हेयर कवरेज करता है, जो कि यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या बन गई है हम लेडीज के लिए। तो रूट टचअप तो लोग रेगुलरली बेसिस पे कराते हैं, मतलब 4 हफ्ते पे आपका रूट अच्छा ग्रो हो जाता है, तो उसके लिए रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स में कैराटिन ट्रीटमेंट है, नैनोप्लास्टी ट्रीटमेंट है एंड बोटॉक्स भी आता है। तो नैनोप्लास्टी जो है वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। एक्चुअली जो नैनोप्लास्टी है वो ऑयल बेस, और आप उसे प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह आप उसे मान सकते हो, वो बहुत हार्श केमिकल्स उसमें बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि एक्चुअली हेयर ड्रेसर क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह का प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप मेकअप की भी बात करो, तो मेकअप में भी दुनिया जहान के फाउंडेशंस हैं, दुनिया जहान के लिपस्टिक्स हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसे ही हेयर के अंदर भी है। कैरेटीन जो है वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है, क्योंकि वो आपके बालों को ज़्यादा स्ट्रेट करता है। जैसे जैसे कैरेटीन वॉश होते रहता है आपके बालों से, आप बाल धोते हो, तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है, जो क्लाइंट बताता है। नैनोप्लास्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनोप्लास्टी ऑयल बेस है, वो आपके बालों के अंदर तक जाके बालों को रिपेयर करता है, उसको नरिशमेंट देता है, और जिससे आपके बाल नेचुरली सॉफ्ट रहते हैं, लो मेंटेनेंस हो जाते हैं, आपको एनवायरमेंटल डैमेज से बचाते हैं, और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरे जो 6 से 8 महीने में दोबारा आते हैं और काम ले रहे हैं, दोबारा से मतलब वो सर्विस ले रहे हैं। तो देखो, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आपका क्लाइंट ही बताता है कि आप क्या चीज़ अच्छी कर रहे हो। अगर वो आपके पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको आपका काम अच्छा लग रहा है। तो हेयर का काम ऐसा है कि लोग आते हैं दोबारा जब काम कराते हैं, तो मुझे भी पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, और वो फिर मैं आगे रेकमेंड भी करती हूँ पर्सनली।
0: तो जैसे लोगों को इस बात को लेके मिथ है क्या कि बालों का कोई भी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हेयर फॉल ज़्यादा होना

0: हो जाएगा, क्या कुछ ऐसा है कि ट्रीटमेंट के बाद कोई हेयर फॉल ज्यादा शुरू हो जाता है?
1: देखिए, अब जहां तक बात है हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल होने का कोई एक कारण नहीं होता है। हाँ, मैं मानती हूँ लोग कहते हैं कि कलर, हमने बालों में कलर कराया था तो हमारा हेयर फॉल होने लग गया, या हमने कलर कराया था तो हमारे बाल सफ़ेद होने लग गए, ये मिथ है। देखिए, कलर, नो डाउट कलर एक केमिकल है जो हमारे, हम रूट पे लगाते हैं या बाल पे लगाते हैं, तो वो उसका कलर चेंज करता है, उसको पिगमेंट देता है, जो भी पिगमेंट आप चाहते हो। बट आप अगर ये सोचो कि उसकी वजह से आपका हेयर फॉल है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल आपके बॉडी पे भी बहुत इफ़ेक्ट, मतलब बॉडी के इफेक्शन से भी होता है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले वो हेयर पे ही आता है, आपके हेयर फॉल होना शुरू होंगे। आप अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, अंदर से आपकी बॉडी वीक है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको मल्टीविटामिन्स चाहिए हैं जो आज के टाइम पे हमें लेना बहुत ज़रूरी है, हमें ओमेगा 3 चाहिए है ना, काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आज हम इतने बिजी हैं अपनी डेली, जो हमारी दिनचर्या है, जॉब्स पे जाना है, घर आके काम करना है ना, तो हम अपने आप का केयर नहीं कर पाते हैं।
0: सही बात।
1: और फिर हमें लगता है कि उस टाइम पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो ये इसकी वजह से है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल है, आप अपने ब्लड टेस्ट कराओ, आप अपने डॉक्टर से बात करो, आप अपने लेवल्स चेक करो कि आपको कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। हेयर फॉल का एक कारण आपकी लो आयरन होता है।
0: तो जैसे प्रीति जी आप बता रहे थे कि मतलब ये एक तरह से मिथ है कि जो हेयर फॉल है, मतलब उनको लगता है कि केमिकल अप्लाई हो रहे हैं हमारे बालों पे तो उससे हेयर फॉल हो रहा है, या मतलब कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो डैमेज नहीं करते हेयर को और हेयर फॉल और वजह से ही हो रहा है।
1: देखिए, हम इसे 100% मिथ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स तो हैं, केमिकल्स हैं तभी वो आपके बालों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बट आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेके प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हो, वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके ऊपर लगा रहा है। अगर तो प्रोडक्ट ऑयल बेस है, लो हार्श केमिकल है जो कंपनीज बताती हैं, तो अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता है। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि क्लाइंट को अगर काम अच्छा लग रहा है, क्लाइंट आपके पास दोबारा काम कराने आ रहा है, तो वो एक तरह से आपको ये नॉलेज भी दे रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे बालों पर अच्छा काम किया, या जो उन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराए थे उससे ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह से हम हेयर ड्रेसर्स को पता लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से हम सप्लाई देते हैं। ये तो हमने स्कूलों में सबने पढ़ा हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक, तो जिस तरह से लोगों को पसंद आता है उस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं।
0: बिल्कुल प्रीति जी, तो सही बात है आपकी, अगर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए जाएँ तो उस वजह से हेयर डैमेज नहीं होता।
1: हाँ जी।
0: तो जैसा कि आपने पहले बताया था अपनी बातचीत में कि केराटिन से फिर भी थोड़ा सा लगता है, पर नैनोप्लास्टी आप बता रहे थे कि वो ऑयल बेस्ड है, वो अच्छा है थोड़ा सा।
1: देखिए, नैनोप्लास्टी भी कई तरह की कंपनीज ने लॉन्च करी है मार्केट में। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो मोस्टली ऑयल बेस्ड है, वो बालों को काफ़ी इंटरनली जाके उसको रिपेयर करता है, बॉन्ड आपका बाल का स्ट्रॉन्ग करता है। केराटिन का देखिए, मैं ऐसे किसी कंपनी के ऊपर मैं हाथ उंगली नहीं उठा सकती हूँ, बट हाँ, केराटिन कराने के बाद क्लाइंट्स बहुत खुश नहीं हैं। जो मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो रिव्यू देते हैं, मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ कि अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमेशा ज़रूरी है जानना कि उनको वो सर्विस कैसी लगी। और वो आप अगले दिन ही नहीं पूछ सकते हो, आपको महीने, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, जब भी आपको लगे कि हाँ, अब ये इनफ टाइम है रिस्पॉन्स देखने के लिए कि प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किया उसका रिस्पॉन्स कैसा था, तो आप उस वक्त पूछ सकते हो। और नैनोप्लास्टी सच में बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, और वो खुश भी हैं वो काम करा के। तो जहाँ तक आई बात केमिकल्स की, अगर हम हेयर कलर करते हैं तो हाँ, वो हमारे बालों पे इफ़ेक्ट करता है। हेयर में एक बहुत मेन प्रोडक्ट है कलरिंग में, उसे लोग ब्लीच कहते हैं, प्री लाइटनिंग कहते हैं हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में। वो भी एक लिमिट तक आप अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं, वो कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है। लोगों को लगता है बालों में ब्लीच लग गई, मेरे बाल ख़त्म हो गए। हाँ, वो आपके बालों पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो आपके बालों से पिगमेंट निकालती है। मुझे लगता है कि हेयर ड्रेसर की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लाइंट को पूरा नॉलेज दें कई बार क्लाइंट जो है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड जाना चाहते हैं, अगर उनका ब्लैक हेयर है या

0: डार्क ब्राउन हेयर है, तो वो बहुत ज़्यादा उसे ब्लॉन्ड पे कलर पे लेके जाना चाहते हैं, और जिससे उनका बाल डैमेज होता है, 100% डैमेज होता है.
1: बिल्कुल, क्योंकि पिगमेंट आ रहा है ना बाहर,
0: पिगमेंट, हाँ, वो आप पूरा पिगमेंट आपका सोक करके निकाल रहा है. तो कुछ हर लेवल्स होते हैं, जब हम ब्लीचिंग भी करते हैं बालों में तो उसके लेवल्स होते हैं. तो ये हेयर ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइंट को बताना कि अगर आप इस लेवल तक अपना कलर लेके जाना चाहते हैं तो आपका बाल इतना डैमेज होगा. बट देयर आर सेफ लेवल्स, जहाँ पे आप ब्लीच बालों में करके उतने ही लिमिट तक आप अपने बाल का कलर निकालिए जितने में आपको डिजायर कलर आ जाए. और हम इंडियन स्किन पे या हेयर्स पे कह लीजिए, आप बिना ब्लीच के भी कलर कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको ब्लीच के साथ जाना है. आप ब्राउन फैमिली के कलर्स में जा सकते हैं, कॉपर फैमिली में जा सकते हैं, रेड फैमिली में जा सकते हैं, अनलेस आप ब्लॉन्ड फैमिली में जाएं, ब्लीच इज सेफ.
1: तो फिर मतलब आपकी बातचीत से ये लगा कि टेक्निक प्रॉपर यूज हो तो ठीक रहता है. प्रीति जी, बहुत अच्छी बात आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप सांझी कर रहे हैं जानकारी. तो हमारे श्रोता बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं. तो हम मिलके फिर से, आप एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे, गाना सुनना चाहेंगे, पर आप ही की पसंद का कौन सा आप बताओ.
0: अब अगर हेयर के टॉपिक पे बात हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम गाना सुने. मूवी का नाम है तीसरी मंजिल और गाने के बोल हैं ओ हसीना जुल्फों वाली.
1: बहुत अच्छा प्रीति जी, आप तो बिल्कुल टॉपिक पे स्टिक गाना ढूंढ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं. चलिए दोस्तों लेते हैं गीत का नाम.

0: का आनंद लेने के बाद फिर से जुड़ते हैं रेडियो प्रिया भारती पे और प्रीति जी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रही हैं और आप बात कर रहे हैं आरजे नीला शीश से। तो दोस्तों आप भी हमें बताएं कि कैसे लग रही है हमारी बातचीत, क्या आपको कोई महत्वपूर्ण कोई अच्छी लग रही है ये जानकारी, अपनी फीडबैक भी दें। तो आइए लेते हैं और जानकारी प्रीति जी से। तो हम जानना चाहेंगे प्रीति जी आपसे कि आपके जो सर्विसेज आप दे रही हैं सबसे आपकी पसंदीदा सर्विस कौन सी है और आप क्यों इसको एंजॉय करती हैं?
1: तो एक्चुअली मेरी सारी सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं उन्हें प्रोवाइड करती हूँ। उसमें से कुछ भी मुझे ऐसा नहीं है कि जो नहीं पसंद है, पर हाँ एक सर्विस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है मेकअप। तो मुझे मेकअप्स करना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कहो मैं 6 घंटे लगातार 6-7 लोगों को तैयार कर सकती हूँ बिना थके हुए, बिल्कुल मुझे टायर्ड फील नहीं होता है। और मैंने ऐसा किया भी है, कई शादियों में मैंने ब्राइडमेड्स तैयार करी हैं। एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जैसे 5 लोगों को तैयार करना है, 6 लोगों को तैयार करना है,
0: लगातार
1: खड़े होके, और मुझे टचवुड मुझे कभी टायर्ड फील नहीं हुआ। और मुझे लगता है क्यों टायर्ड फील नहीं हुआ, क्योंकि जब लोग आते हैं मैं उनकी बिफोर आफ्टर फोटो उनसे पूछ के लेती हूँ, ताकि वो अगर देखना चाहें कि वो पहले कैसे लग रहे थे और क्या डिफरेंस है मेकअप के बाद। तो सबसे पहले लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मेकअप चाहिए है पर हमें मेकअप नहीं चाहिए है। तो आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि उनको एक सटल लुक चाहिए, जो आजकल के टाइम में हर किसी को पसंद है। किसी को भी मुंह पे थुपा हुआ केकी मेकअप, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ग्लिटर्स जो बाद में फेस पे गिर रहे हैं, ऐसा लुक किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो आज के दौर में लोगों को सटल लुक बहुत पसंद है। और जब मुझे कोई क्लाइंट ये पूछता है कि हमें ना मेकअप तो चाहिए है, अच्छा मेकअप चाहिए लेकिन सटल चाहिए,
0: नेचुरल लगे
1: तो फिर वो तो कम प्राइस पे होना चाहिए। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपकी जानकारी के लिए जो सटल मेकअप करना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल मेकअप है, क्योंकि प्रोडक्ट लेके उसको टेक्निक वाइज फेस पे लगाना और उससे नेचुरल दिखाना, इट्स अ टास्क,
0: बिल्कुल बड़ा
1: टास्क। और ये आपके हाथ का हुनर है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट ये काम करते हैं उन्हें पता है कि सटल लुक देना इज द टफेस्ट लुक, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी लगाना है, लेकिन आपको प्रोडक्ट
0: लगना भी नहीं चाहिए कि मेकअप किया हुआ है।
1: प्रोडक्ट ऐसे लगाना है कि वो उनको थुपा हुआ नहीं लगे अपने फेस के ऊपर, और बहुत नेचुरली उनके फीचर्स को एनहांस करें। और जब भी मेकअप करने के बाद मुझे क्लाइंट वहीं चेयर पे बैठे बैठे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अरे वाह हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम वैसे नहीं लग रहे जैसे हमने सोचा था। कई बार क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि हम निकल रहे थे तो हमारे हस्बैंड ने बोला और हमारे बेटे ने बोला कि अभी तो मम्मी जा रही है, वापस पता नहीं कौन सी मम्मी आएगी।
0: तो क्योंकि
1: क्योंकि पहले के टाइम पे पहले के टाइम पे ऐसे मेकअप होते थे कि आपका चेहरा बदल जाता था, आप बिल्कुल अलग लगते थे। लेकिन आज के टाइम में जो मेकअप की टेक्निक्स हैं वो काफी बदल गई हैं। नो डाउट हमारी जो स्किन है, कई बार एशियन स्किन मैं कहूंगी, वो थोड़ी पिगमेंटेड है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, तो उसको टैकल करना कई बार मुश्किल हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए, जिसके लिए हमें प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं उन पिगमेंट्स को हाइड करने के लिए। और जब आप काम करते हो, कोई भी काम करता है और उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि क्लाइंट को लगता है कि जो उनकी डिज़ायर थी, जो वो सोच कर आए थे कि उन्हें वैसा लुक चाहिए और उन्हें वैसा लुक मिला, तो वो आपको खुशी देता है, वो क्लाइंट को भी खुशी देता है, तो आपको डबल बेनिफिट है।
0: तो इसीलिए आपका ये पसंदीदा पार्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक और कारण है इसका कि जब मुझे नेक्स्ट डे क्लाइंट फोन करके ये बताता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, या पार्टी में जितने लोग थे उन्होंने मुझे देखकर उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, तो जितना खुशी उनको होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे होती है कि तो मैंने
0: काम आपका था,
1: कि मैंने वो काम करके दिया कि किसी को खुशी मिली।
0: बिल्कुल। तो बहुत अच्छा प्रीति, जैसे लोगों जैसा चाहते हैं वैसी सर्विस उनको मिल जाती है, मन को खुशी देती है। तो इस खुशी में वृद्धि करने के लिए कोई आप अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कैसा कोई आपको यादगार अनुभव रहा हो, वो हमसे साझा करें प्लीज़।
1: यादगार अनुभव तो सारे ही होते हैं, क्योंकि मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से इंट्रैक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रील्स बनाना बहुत पसंद है। तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बहुत चुलबुले हैं, मेरी तरह मैं उनसे परमिशन लेती हूँ पहले, अगर वो रील बनाना चाहें तो मैं उनके साथ रील बनाती हूँ बिफोर आफ्टर मेकअप की, और उनको थोड़ी बहुत एक्टिंग के स्टेप्स बता देती हूँ गाने के साथ, जिसे वो करके बहुत खुश होते हैं।
0: अच्छा, साथ में ये सर्विस भी देते हैं क्या बात है।
1: नहीं, हम बहुत खुशी खुशी काम करते हैं एक्चुअली। टचवुड, जो भी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैंने उन्हें हमेशा हंसते ही देखा है, कोई दुखी होकर नहीं गया। और अगर कभी कोई दुखी हो भी गया हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, कई बारी उतनी खुशी नहीं दे पाती। बट हाँ, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं उनकी परमिशन से, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे डालते हैं, और जब लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा खुशी देता है।
0: तो वो खुशी देने वाली फ़नी वीडियोस बनाते हो ताकि देख के खुश हों लोग?
1: हाँ बिल्कुल। आप अगर देखना चाहेंगे सोशल मीडिया पे आजकल जितना मेकअप का ट्रेंड है या और किसी सर्विस का ट्रेंड है, फनी वीडियोस कितनी आती हैं, वो लोगों को खुशी देती हैं, लोगों का मन बहला के रखती हैं स्ट्रेसफुल माहौल में। आपने देखा ही होगा आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो बस उसी तरह से हम भी वीडियोस बनाते हैं क्लाइंट्स के साथ और उन्हें खुशी देते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है प्रीति जी आप, क्योंकि आज का तो इतना तनाव भरा जीवन है सबका, तो कोई भी चीज, छोटी सी भी चीज खुशी दे जाए तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं आप। तो पुण्य भी फलियां भी, आपका भी काम हो रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा। तो चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर से जुड़ेंगे रेडियो प्रिया भारती में और कुछ और बातें आपसे साझी करेंगे। पर आपकी पसंद का फिर से एक गाना सुनना चाहेंगे।
1: अब आप मेरी पसंद का एक और गाना सुनना चाहते हैं, तो एक फिल्म है दिल्ली का ठग, किशोर कुमार जी और आशा भोंसले ने वो गाना गाया है। और क्योंकि लोग मेकअप करके रात को पार्टियों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो गाने का नाम है ये रातें ये मौसम, तो क्यों ना ये बजाया जाए।
0: क्या बात है, बिल्कुल स्टीक चुना गाना आपने, बहुत अच्छे। चलो दोस्तों लेते हैं गीत का आनंद, ये रातें ये मौसम।

0: तो दोस्तों आइए फिर से हम रेडियो प्रिय भारती पे प्रीति जी से थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। प्रीति जी, हम जानना चाहेंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है और आप उसको कैसे टैकल करते हैं?
1: देखिए, आज के टाइम पर आपके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, और साथ ही साथ जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में नए नए लॉन्च होते रहते हैं। तो आपको अपने आप को उनके साथ अप टू डेट रखना पड़ता है। आपको वो टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं, आपको वो ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, ताकि आप उस मार्केट के साथ अपने साथ मतलब बराबरी में आप चल सकें और आप अपने क्लाइंट्स को जो भी लेटेस्ट सर्विसेज आ रही हैं वो प्रोवाइड कर सकें। तो उसको चेज करना, उसके साथ बने रहना अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फुल टाइम जॉब है, हाँ, तो वो सब ट्रेनिंग्स लेते रहना, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखना, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्लाइंट है, अगर कोई सोचे कि उनको कुछ नहीं पता है, वो बेवकूफ है। नहीं, क्लाइंट आपसे ज्यादा समझदार है। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैला दी है मार्केट में कि आज हर किसी को हर तरह की नॉलेज है। तो आपको भी अपने आप को उस हिसाब से अपडेट रखना पड़ता है, जो मुझे भी रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम निकाल सकूँ और जो भी मेरे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनको फुलफिल कर सकूँ।
0: प्रीति जी, तो और कौन से तरीकों से आप अपनी स्किल्स को अपडेट रखती हैं?
1: देखिए, आज के टाइम पे सोशल मीडिया जो है वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको बताता है कि मार्केट में क्या नया आ रहा है। मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको अपडेट रखते रहते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है, आप इसे यूज़ करके देखिए, जो मैं भी अपने बिजनेस में यूज़ करती हूँ, क्लाइंट्स के साथ उनके साथ साझा करती हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। कई बारी मैं जाती हूँ अगर कुछ सामान खरीदने और कुछ नया लेके आती हूँ जो बहुत अच्छे प्राइस में है, चाहे वो फाउंडेशन है या कोई नई तरह की लिपस्टिक आई है जो लॉन्ग स्टे है, तो मैं फट अपने मेरे जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं मैं उन्हें वर्बली बताती हूँ कि अरे ये मार्केट में आया है, ये बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, अगर आपको सेल्फ मेकअप घर पे करना है या पार्टी मेकअप करना है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी टच में रहती हूँ और नई नई चीज़ें खुद भी ट्राई करती हूँ और सोशल मीडिया भी प्रॉपर फॉलो करती हूँ नॉलेज के लिए, ताकि जब क्लाइंट आके मुझे पूछे कि हमें ये करना है और मैं ये ना कहूँ कि अच्छा ये कौन सी सर्विस आ गई है मार्केट में,
0: तो बस अप टू डेट तो रखना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कंपनीज भी आपको कॉन्टेक्ट करती होंगी जब कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी सारे कंपनीज के साथ मेरा टाई अप है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, और काफ़ी सारे ऐसे वेयर हाउसेज भी होते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका बेनिफिट मैं मेरे क्लाइंट्स को भी देती हूँ। जो चीज़ मुझे सस्ती पड़ती है अगर मेरे क्लाइंट्स मांगते हैं तो मैं वो उन्हें ला के देती हूँ, ताकि मेरा उनका वो बॉन्ड बना रहे और उनकी अगर कहीं चार पैसे बच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उनके साथ, मेरा
0: बिल्ड होती है क्लाइंट के साथ।
1: और अगर मेरे को, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े पैसे कहीं बचा पाऊँ, तो फिर क्लाइंट क्यों नहीं, क्लाइंट क्यों अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे बाहर भर के दे। तो मैं उन्हें इतना अपनी तरफ से मैं जितना सपोर्ट कर पाती हूँ मैं करती हूँ, और वो इस चीज से खुश है।
0: तो ब्यूटी की बात करते करते प्रीति जी, हमारे श्रोता मेरे साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेचुरल ब्यूटी के बारे में आपकी क्या राय है?
1: नेचुरल ब्यूटी मैं कहूँगी कि देखिए, हर कोई नेचुरल ब्यूटी लेके ही पैदा हुआ है ना, हर किसी के अंदर एक अलग खूबसूरती है, बस देखने का आपको नज़रिया चाहिए है। मेकअप और ब्यूटी या हेयर या नेल्स, ये जो सर्विसेज मार्केट में चल रही हैं, इससे हम सिर्फ उनकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, उसे उभारते हैं, वो भी ज़रूरी है। आप सिर्फ नेचुरल ब्यूटी पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सो के उठ के मुंह धो के किसी पार्टी में चले जाओ तो थोड़ा आपको भी अजीब लगेगा। तो सटल मेकअप, नेचुरल मेकओवर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बाल आपके सर का क्राउन है, आपको क्राउन लिटरली वेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको गॉड गिफ्टेड है। तो अगर वो आपने अच्छे से मेंटेन किया है, आपने अच्छा हेयर स्टाइलिंग किया है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको अच्छा लगता है, और मेरे जैसे लोग जो मार्केट में बैठ के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगता है जब उनके काम की तारीफ होती है या क्लाइंट दोबारा उनके पास आता है। नो डाउट नेचुरल ब्यूटी है, और बहुत है, बहुत है, हर किसी में भर भर के है।
0: और ये मेकअप वगैरह उनको एनहांस कर देते हैं, अच्छे अच्छे जब सुंदर लगते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है।
1: वो सिर्फ उनको उभार, आपके जो फीचर्स हैं उसको डिफाइन करता है, उसे उभारता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे। प्रीति जी, बातचीत तो करने का बहुत मन है, पर अभी एक गाना सुनते हैं फिर से।
1: जरूर जरूर। तो जब अगर हम ब्यूटी को लेकर, और आपने मुझसे नेचुरल ब्यूटी को लेकर क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, तो एक फिल्म है कुदरत, किशोर कुमार जी का ये गाना है, कि हमें तुमसे प्यार कितना, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। ये मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपसे लोग भी प्यार करते हैं। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना।
0: बहुत अच्छा संदेश दिया है प्रीति जी आपने हमारे श्रोताओं को, बिल्कुल अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो आइए दोस्तों लेते हैं गीत का आनंद, हमें तुमसे प्यार कितना।

0: तो दोस्तों संगीत की दुनिया से बाहर आए क्योंकि प्रोग्राम हमारा अंतिम चरण में है. हम विदा लेंगे अब, पर जाने से पहले हम प्रीति जी से पूछना चाहेंगे क्योंकि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि अगर वो आप उनको कांटेक्ट करना चाहें, सेवाएं लेना चाहें, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं.
1: देखिए, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल वेबसाइट पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं एब्सोल्यूट मेकओवर्स बाय प्रीति, और आपसे मतलब मैं कांटेक्ट करूंगी.
0: बहुत अच्छे प्रीति जी, तो वो ढूंढ सकते हैं आपको गूगल पे.
1: हाँ जी.
0: तो प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको रेडियो एडलाइड की तरफ से, रेडियो प्रिया भारती की तरफ से, शंपा जी की तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से. तो आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं अपने बालों को, अपनी सर्विसेज ब्यूटी को, तो कैसे हम सर्विसेज ले सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और जाने से पहले आप कोई संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को.
1: मैं आप सबका और अपने श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुना और मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अवसर दिया कि मैं उनसे बात कर सकूँ. मैं एक सेल्फ केयर का महत्वपूर्ण जो संदेश है वो मैं आप सबको देना चाहूँगी. प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पानी पिएं, जितना हो सके नेचुरल फूड खाएँ, अपने वाइटल्स जो हैं वो आप रेगुलर चेक करते रहें, और प्लीज़ अपना ध्यान रखें. प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे.
0: धन्यवाद. तो दोस्तों इसी के साथ मैं नीला श्री आपसे विदा लेना चाहूँगी. फिर से रेडियो प्रिया भारती में किसी अन्य मेहमान के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे. शंपा जी हमारे साथ बने हुए हैं अब तक, उन्होंने प्रोग्राम प्रोड्यूस किया ये, तो हम उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे. और दूसरा, हम जाने से पहले एक और मधुर सा गाना सुनेंगे जिसके बोल हैं आज जीने की, फिर से जीने की तमन्ना है, जो कि वहीदा रहमान जी पे फिल्माया गया है, गाइड फिल्म से है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है. आज रविवार की इस दोपहर में रेडियो एडलाइड पे आप फिर से 2 घंटे लगातार रेडियो सुन सकते हैं, 1 से 2.